0: دنیا کے ساتھ، تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین۔
0: FM 92.6

ये वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत छोड़कर गुमराही खरीदी, तो न तो उनकी तिजारत ही ने कुछ नफा दिया और न वो हिदायत याब ही हुए।

उन्होंने कहा, अपने परवरदिगार से इल्तजा कीजिए कि वो हमें ये बताए कि वो बैल किस तरह का हो। मूसा ने कहा, परवरदिगार फरमाता है कि वो बैल न तो बूढ़ा हो और न बछड़ा, बल्कि उनके दरमियान यानी जवान हो। सो जैसा तुमको हुक्म दिया गया है वैसा करो।

0: और यहूदी और ईसाई कहते हैं कि यहूदियों और ईसाइयों के सिवा कोई बहिष्ट में नहीं जाने का, ये उन लोगों के ख्यालात बातिल हैं। ऐ पैगंबर, उनसे कह दो कि अगर सच्चे हो तो दलील पेश करो।
1: बला।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: Broadcasting from University Studios,
1: where knowledge is empowerment.
0: This is
2: 92.6.
3: जी तो लिसनर्स, ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और अब हम करते हैं डॉक्टर वहीद से मजीद गुफ्तगु। सर, आप अपना PhD वगैरह के रिलेटेड और IR की डिग्री के रिलेटेड बता रहे थे, किसका क्या बेसिकली है क्या, तो उसको आप थोड़ा रैप अप करेंगे इस बात।
4: हाँ जी, अच्छा जी, मैं ये अभी बात हो रही थी कि जी हमने UCP में MPhil शुरू किया, तकरीबन 3 साल हो गए हैं अब उसको, हमारे कई बैचेस ग्रेजुएट भी हो चुके हैं और PhD हमने 1 साल हो गया शुरू की है। तो ओवरऑल जो है, किसी भी डिपार्टमेंट की स्ट्रेंथ यही होती है कि उसमें कितना रिसर्च है, रिसर्च कल्चर है, क्योंकि जो हमारे PhD के और मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं ये भी गाइड करते हैं अपने स्टूडेंट्स को, BS को भी। तो आपके ओवरऑल डिपार्टमेंट की स्ट्रेंथ इसी में होती है कि उसमें मास्टर्स और PhD के प्रोग्राम्स भी होने चाहिए। तो ये बड़ी एक लिहाज से कह लें कि कंपेयर टू मैनी अदर डिपार्टमेंट्स इन पाकिस्तान, ये बड़ी अचीवमेंट थी UCP के लिए। तो बड़ा अच्छा है, उससे बड़ा अच्छा कल्चर डेवलप होता है, रिसर्च और इनोवेशन की तरफ चलते हैं। दूसरा, हमने नया इनिशिएटिव शुरू किया था BS पॉलिटिकल साइंस का रिसेंटली, 1 साल तकरीबन दूसरा साल कंप्लीट होने वाला है। तो उसमें बड़ा अच्छा रिस्पांस है, उसमें भी ज़्यादातर ये डोमेस्टिक जो है पॉलिटिकल जो फैक्टर्स हैं उस पे भी एक डिग्री के ऑप्शन है। तो डिपार्टमेंट ओवरऑल ड्यूरिंग माई 5 ईयर्स हमने बड़ी एफर्ट करके इसको ग्रो किया है। बाकी आगे फर्दर बातें करेंगे, हमने जैसे दूसरी चीज़ें हैं, सेमिनार्स करवाते हैं, कॉन्फ्रेंसेस, वो उस पर भी वी विल डिस्कस शॉर्ट।
3: सर, जब हम दूसरी फैकल्टीज की बात करते हैं या उनके टीचर्स के साथ बात करते हैं, तो वो भी हमें आके बताते हैं कि उनकी फैकल्टी में फॉरेन स्टाफ कितना है, फॉरेन स्टडी किया हुआ स्टाफ कितना है। तो IR के डिपार्टमेंट में फॉरेन फैकल्टी कितनी है?
4: हमारी तकरीबन जो है ये कह लें कि 40% के करीब जो है फैकल्टी, हमारे टोटल तकरीबन हमारे 14-15 करीब फैकल्टी मेंबर्स हैं, उनमें तकरीबन 40% जो है फॉरेन क्वालिफाइड हैं। मेरी अपनी PhD अमेरिका से है, हमारे एक और एसोसिएट प्रोफेसर हैं डॉक्टर शहजाद, उनकी PhD न्यूजीलैंड से है, फिर इसी तरह चाइना से PhD है एक, फिर हमारे मास्टर्स काफ़ी लोगों ने किया इंग्लैंड से, तो बड़े अच्छे इदारों से। तो वो भी जो है इससे ये होता है कि आपको एक इंटरनेशनल एक्सपोजर भी आता है और फिर ये अपना लोकल भी जो डिग्रीज हैं बड़ा अच्छे इदारों से हमने हायर किए हैं, तो जिस तरह कायदा यूनिवर्सिटी से, गवर्नमेंट कॉलेज से, इस तरह। तो बड़ा अच्छा एक उसमें हमने कोशिश की है कि, और ये इन एडिशन टू जो रिसर्च कल्चर इन एनी डिपार्टमेंट, बाकी जो मैं ये हर कोई एग्री करेगा कि फैकल्टी की स्ट्रेंथ जो है, उनकी क्वालिफिकेशन कैसी है, कहाँ से है और कितने कैपेबल हैं, तो वो बड़ा ज़रूरी है। तो इस पे हमने बहुत ज़्यादा फोकस रखा है कि, और उसका रिजल्ट भी हमें अच्छे आ रहे हैं। देखें, MPhil हमने शुरू कर दिया, PhD शुरू कर दिया, तो वी आर गेटिंग वेरी गुड रिजल्ट्स आउट ऑफ दैट। तो जब आपकी अच्छी टीम होगी तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा।
3: सर, जैसे दूसरे डिपार्टमेंट्स में लैब्स वगैरह होती हैं, जैसे डी फार्म वालों की फार्मेसी की लैब होती है, मीडिया वालों के पास प्रोडक्शन हाउस होता है, IR के स्टूडेंट्स के बाद प्रैक्टिकल वर्क करने के लिए क्या होता है?
4: अच्छा, इसमें थोड़ा सा ये है, जिस तरह CSS के लिए हम कहते हैं ये IR की डिग्री है, उसके लिए ये हर डिग्री की अपनी एक नेचर होती है। जिस तरह एक नेचुरल साइंस है, आप बायोलॉजी की डिग्री, आपने फॉर एग्जांपल लैब में काम करना है सारी उम्र, तो लैब की ट्रेनिंग आपको जरूरी है। लेकिन हम जो प्रिपेयर करते हैं या इंटरनेशनल रिलेशंस के जो स्टूडेंट्स हैं, इनको मल्टीपल जो है फील्ड्स में, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उनके ऐसे स्किल्स डेवलप किए जाएँ जो उनको, जिस तरह CSS के लिए है, उनको एक तो वो नॉलेज हो गवर्नमेंट्स, हाउ डू गवर्नमेंट्स ऑपरेट एंड हाउ डज इंटरनेशनल सिस्टम वर्क, और पाकिस्तान की पोजीशन इंटरनेशनल लेवल पे क्या है, इस तरह की चीज़ें। दीज आर ऑल रेलिवेंट क्वेश्चंस इन CSS के एग्जाम में ज़्यादातर चीज़ें, बल्कि 200 नंबर का वहाँ पे कंपलसरी इंटरनेशनल रिलेशंस का सब्जेक्ट होता है, और बाकी भी कई सब्जेक्ट्स में इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिकल साइंस के रिलेटेड जो चीज़ें हैं गवर्नमेंट की, दैट इज़ यू आर अप्लाइंग फॉर गवर्नमेंट जॉब, तो गवर्नमेंट के रिलेटेड नॉट ओनली डोमेस्टिक बट इंटरनेशनल लेवल पे भी जो चीज़ें हैं उसके लिए ग्रूमिंग हम की जाती है। तो कैसे करते हैं, तो बेस्ट तो हम ये करते हैं कि एक तो उनका जो नॉलेज है उसमें, BS कर लें, आगे 4 साल का है डिग्री, उसमें बड़ा डेप्थ में जाके हम चीज़ें, थ्योरेटिकल नॉलेज भी होता है, प्रैक्टिकल चीज़ें भी, एक तो नॉलेज उनको ये है कि उनकी जिस तरह CGPA

0: आपका, तो उसका आपका स्कोप भी ब्रॉडर हो जाता है उसमें। तो हमने जैसा हर क्लास में रिक्वायरमेंट होती है कि एक रिसर्च कंपोनेंट होता है, उन्होंने किसी एक प्रॉब्लम को, इंटरनेशनल प्रॉब्लम को लेके उस पर रिसर्च करनी होती है, या प्रेजेंटेशंस तकरीबन हर क्लास में होती है। तो स्टूडेंट हमारे 35-40 क्लासें पढ़ते हैं बीएस में, तो हर क्लास में जब वो बार बार प्रेजेंटेशंस और ये चीज़ें करते हैं तो उससे उनके जो ये जो स्किल्स हैं डेवलप होते हैं, जो उनके मार्केट में कल को देखें। डिग्री तो आपको एक कह लें कि जिस CSS है आप अप्लाई कर सकते हैं या एग्जाम में बैठ सकते हैं, लेकिन उसमें कामयाबी जो है, या किसी भी और जॉब के लिए आप जाते हैं तो कामयाबी आपके जो स्किल्स हैं, आपको बोलने का कॉन्फिडेंस, आपको प्रेजेंटेशंस और ये चीज़ें, तो डिग्री आपको डोर के अंदर ले जाएगी इंटरव्यू रूम में, लेकिन वहाँ परफॉर्म जो है वो आपने अपने स्किल्स के, तो हमारी पूरी कोशिश होती है उन स्किल्स को डेवलप किया जाए, तो उसमें प्रेजेंटेशंस आ जाती हैं। फिर हम ये जो हमारे MOUs भी हैं, थिंक टैंक्स हैं इस्लामाबाद में, इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटजिक स्टडीज़ है, ये सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज़ है, लाहौर के अंदर है CAS है, सेंटर फॉर एयरोस्पेस एंड स्ट्रेटजिक स्टडीज़, इन सब के साथ हमारी कोलेबोरेशन है। हमारे स्टूडेंट वहाँ उनके जो सेमिनार्स होते हैं वहाँ भी जाते हैं, अपना हमारा एक ट्रिप होता है साल में स्टूडेंट्स को, बीएस के स्टूडेंट्स को हम वहाँ भेजते हैं, ताकि वो उनको जो प्रैक्टिकली जो है पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी और ये सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट लेवल पे हो रही हैं, हमारे स्टूडेंट मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में भी जाते हैं ड्यूरिंग दैट ट्रिप, बल्कि नेशनल असेंबली और ये चीज़ें। तो कंपेयर टू कह लें कि अगर कहीं और भी डिग्री हो रही है IR की, तो UCP इसमें हमने एक एज लिया है कि हम कनेक्शन जो है इस्लामाबाद और ये वो स्टूडेंट्स को, और जिसे इंडस्ट्रियल लिंकेजेस कहते हैं, तो वो काफ़ी स्ट्रांग हद तक जो है काफ़ी इदारों के साथ। फिर हमारे ये जो कुछ चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ हैं, टर्की के यूनिवर्सिटी है, उनके साथ MOUs भी साइन किए हुए हैं, तो हमारे स्टूडेंट्स वहाँ जा सकते हैं। तो उसके अलावा ये यूनिवर्सिटी लेवल पे हमने ये सोसाइटीज़ हैं डिफरेंट, हमारी डिबेटिंग सोसाइटी है और इस तरह की और सोसाइटीज़ हैं, ड्रामेटिक सोसाइटी, तो उसमें भी ये है कि हमारे स्टूडेंट्स को बात करने की, उनको कॉन्फिडेंस आए लीडरशिप रोल प्ले करने की, तो ये सारी ग्रूमिंग हम करते हैं कि एज ए पर्सन उनको हम डेवलप करते हैं, ताकि वो कहीं भी जाएं जॉब के लिए, CSS करें या आगे फर्दर स्टडीज करके रिसर्च की तरफ आना चाहते हैं, तो दे शुड बी लीडर्स, उनको बोलने का कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उनको लिखने का, उनको पढ़ने का, उनको इस सारी चीज़ में। तो ये सारे रिसोर्सेज हैं, जो भी स्टूडेंट एडमिट हो तो वो इन चीज़ों को अगर डेवलप करे, तो हो सकता है कहीं और BS की डिग्री हो तो ये चीज़ें नहीं हो रही होती जो GCP में हो रही हैं, तो इन चीज़ों को अगर यूटिलाइज करें तो काफ़ी बेटर चांसेस हैं कि स्टूडेंट हमारे आगे ग्रो कर सकते हैं।
1: जी तो लिसनर्स, अब हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और इसको मजीद हम परस्यू करेंगे। सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: गए हैं स्टूडेंट्स हमारे, एक स्टूडेंट फॉर एग्जांपल अमेरिका में गया है, जॉन्स हॉपकिंस, वहाँ की टॉप की यूनिवर्सिटी है अमेरिका के अंदर भी, तो उसमें वो मास्टर्स कर रहा है। हमारे कुछ स्टूडेंट टर्की गए हैं, वहाँ पे मास्टर्स करने गए हैं। एक स्टूडेंट को फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिला है, वो हंगरी का, वहाँ गए हैं। फिर हमारे वो स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में भी टर्की और इंग्लैंड गए हैं दो तीन स्टूडेंट्स। तो डिफरेंट स्टूडेंट्स जो हैं डिफरेंट मुल्कों में जाके, फिर कुछ ये जो हैं यहाँ पे फर्दर स्टडीज़ कर रहे हैं, एमफिल जो है पाकिस्तान के अंदर एफसी कॉलेज में कर रहे हैं, कुछ कुछ इधर कर रहे हैं अपना कायदे यूनिवर्सिटी में। तो इस तरह की जो है, अब अभी तक हमारा वो सीएसएस कोई नहीं हो, लेकिन क्योंकि अभी 3-1 साल हुए हैं हमारे इस प्रोग्राम स्टूडेंट्स को ग्रेजुएट होते हुए, तो कुछ स्टूडेंट जो है BSIR करके वो अपना CSS की तैयारी के लिए अपना बैठ गए हैं। फिर एडिशनली ये है कि हमारे कुछ स्टूडेंट मीडिया में भी गए हैं, और IR की डिग्री के हवाले से ये मीडिया का भी एक आता है कि मीडिया में भी पॉलिटिकल साइंस या IR की डिग्री को भी थोड़ा सा प्रेफरेंस दे। एक दो स्टूडेंट तो एज एन एंकर गए हैं, और कुछ जो है कंटेंट राइटर जो हैं। तो मीडिया में क्योंकि ये ज़्यादातर जो मीडिया चैनल्स हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं, वो ज़्यादातर वहाँ पे पॉलिटिकल न्यूज़ या इंटरनेशनल न्यूज़ ही होती हैं, तो ये डिग्री का इसका जो फ़ौरन अगर कहें कि BS के फ़ौरन बाद आपको जॉब का है, तो इसमें जो ज़्यादातर ये मीडिया की तरफ से हमारे स्टूडेंट्स जाते हैं। फिर ऑनलाइन जिस तरह है, काफ़ी स्टूडेंट्स उसमें काफ़ी अचीवमेंट कर रहे हैं, उसमें अपना मार्केटिंग में दूसरी चीज़ों में दे आर एक्सेलिंग, क्योंकि उनका एक एक्सपोजर जो है वो इंटरनेशनल लेवल का हो जाता है डिग्री के लेने के बाद। प्लस हम जिस तरह एडिशनल चीज़ें करवाते हैं, उनकी पर्सनल ग्रूमिंग करवाते हैं, तो कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स दे आर गुड, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट इन स्पीकिंग, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट इन प्रोसेसिंग दैट इन्फॉर्मेशन, एंड दे हैव बेसिक नॉलेज हाउ गवर्नमेंट वर्क्स एंड हाउ इंटरनेशनल सिस्टम वर्क्स। तो इससे जो है उनको कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स इन द मार्केट, खासतौर पर जिस तरह एक बंदा है जिसने मेडिकल करके या इंजीनियरिंग करके CSS में आया, जो हमारी डिग्री IR की डिग्री करके आएगा, तो उसको ये एज होगा कि उसको पहले ही बेसिक चीज़ों का जो है सारा एक थॉरो नॉलेज है। इंटरनेशनल लेवल पे भी इसी तरह ही है कि दे नो ऑल द बेसिक्स ऑफ दैट। फिर हमारे जिस तरह फैकल्टी फॉरन भी है, वो भी साथ गाइड करते रहते हैं कि कौन कौन से हर्डल्स या कौन कौन सी चीज़ें आपने डील करनी है, तो दे आर फुली प्रिपेयर्ड। हमारा फोकस यही होता है कि जी व्हेन आवर स्टूडेंट्स गो टू द मार्केट, दे शुड हैव एज ओवर अदर स्टूडेंट्स, तो ये उसी पे हमारा पूरा जो है डिग्री का फोकस होता है।
1: सर, UCP में स्टूडेंट्स की टीचर के साथ जो इंटरेक्शन होती है क्लास के दौरान, क्लास के बाहर, कितनी रहती है?
0: अच्छा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जी। मैंने पब्लिक सेक्टर में खुद पढ़ा भी हूँ और इंटरेक्शन भी रहता है, तो कई यूनिवर्सिटियाँ या कॉलेजेस ऐसे होते हैं जहाँ पे BS या मास्टर्स भी हो रहा होता है, लेकिन वहाँ पे टीचर्स क्लास में नहीं जाता और उस पर कोई उसमें उससे पूछताछ नहीं की जाती और ये वो। तो लेकिन इस वाले से UCP का बड़ा अच्छा कल्चर है, बल्कि इससे कह लें कि हमारे जैसे पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस से ही वो कंटिन्यू करता है कि जी ये इस पे टॉलरेंस नहीं है टीचर के लिए भी और स्टूडेंट के लिए भी कि दे शुड बी एब्सेंट फ्रॉम क्लासरूम। तो उसके लिए बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, जिस तरह वो अटेंडेंस का है उन्होंने लाजमी आना है, अटेंडेंस लाजमी होनी है, क्लासरूम के अंदर ही पॉसिबल है अटेंडेंस क्योंकि वो कंप्यूटर की वजह से। तो ना टीचर ना स्टूडेंट, उनके लिए कोई रूम नहीं है क्लासेस का छोड़ने का। तो इससे जो इंश्योर करता है कि स्टूडेंट और टीचर दोनों दे शुड बी प्रेजेंट इन द क्लास। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक टीचर 10 मिनट भी क्लास में लेट होता है, उसको कॉल चली जाती है कि जी आपकी क्लास शुरू क्यों नहीं हुई। तो ये आई रियली अप्रिशिएट कंपेयर टू अदर इंस्टीट्यूशंस इन पाकिस्तान के, जी इसमें जो डिसिप्लिन का बड़ा अच्छा रोल है। तो इससे ये होता है कि टीचर को पता है मैंने क्लास में जाना है, स्टूडेंट्स को भी पता है, तो वो जो अपना ये होता है कि क्लास हो ही नहीं रही या टीचर ने कहा अच्छा जी महीने में एक क्लास ले ली, तो वो कल्चर बिल्कुल नहीं है। उससे बड़ा अच्छा एक इंटरेक्शन में एक तो ये आ जाती है। फिर क्लासरूम में जो जिस तरह हमारे टीचर, उसमें फिर यही आ जाता है कि टीचर जितने क्वालिफाइड होंगे उतना वो स्टूडेंट्स को आगे गाइड कर सकेंगे। तो कोशिश तो की जाती है, वैसे तो क्लास का साइज मैक्सिमम 40 के करीब रखा है, 40-45, लेकिन नॉर्मली एवरेज क्लास 20-25 तक एवरेज स्टूडेंट की होती है। तो टीचर का डायरेक्ट जो है इंटरेक्शन उसमें, खासतौर पर जो आपके डिसिप्लिन रिलेटेड सब्जेक्ट, क्योंकि इसमें हमारे कुछ पाकिस्तान स्टडीज़ है जिस तरह इस्लामिया था, इंग्लिश है, कुछ एडिशनल कोर्सेज भी होते हैं, लेकिन जो सब्जेक्ट रिलेटेड है उसमें कोशिश होती है कि पूरी टीचर जो है इंटरेक्शन, टीचर इंटरेक्शन ये कि तकरीबन हर क्लास में एक तो जिस तरह प्रेजेंटेशंस है, फिर हर क्लास में एक डिस्कशन का होता है, सिर्फ टीचर लेक्चर नहीं देता, लेक्चर के साथ डिस्कशंस भी होती हैं, ये सारी चीज़ें। तो ना सिर्फ टीचर देमसेल्स, लेकिन जिस मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट था तो मैंने भी क्लासों में विजिट करके इंश्योर करना था कि टीचर जो है किसी स्टूडेंट को इग्नोर नहीं कर रहा और सबको इन्वॉल्व करके, सबसे क्वेश्चन पूछ के या उनको करके। तो ये कुछ तो जिस इंस्टीट्यूशन लेवल पे है कि जी स्टूडेंट और या टीचर जो क्लास है उसको लाजमी आना है, और फिर जिस हमने आगे फर्दर रखा है कि हर स्टूडेंट को इन्वॉल्व करना है ताकि उनकी जो है ग्रूमिंग अच्छी तरह हो सके थ्रू आउट द देयर स्टे एट यूसीपी। तो इससे एक बड़ा अच्छा जो है ना स्टूडेंट हमारे बड़ा ग्रूम होकर निकलते हैं।
1: सर आखिर में एक सवाल और सबसे जरूरी सवाल जो कि हर एक को सुनना चाहता है कि आखिर यूसीपी ही क्यों?
0: हाँ जी चलें, ये बड़ा मैं काफी हद तक हमने कुछ
1: बाकी भी प्राइवेट सेक्टर्स पब्लिक सेक्टर्स आईआर करवाते हैं, लेकिन यूसीपी के आईआर डिपार्टमेंट्स की ऐसी क्या खासियत है?
0: अच्छा इसमें ये है जो बिल्कुल डिस्टिंग्विशिंग एक सबसे है कि जिस तरह हमारा अब हम जाते हैं ट्रिप लेके हर साल स्टूडेंट्स का जो इस्लामाबाद में डिफरेंट थिंक टैंक्स, कम से कम 4-5 थिंक टैंक्स हैं जहाँ पे पॉलिसीज बनती हैं, फॉरेन पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसी। तो ये कह लें कि पूरे पाकिस्तान में, और हम जब जाते भी हैं कि वो कहते हैं कि पाकिस्तान से और कोई यूनिवर्सिटी नहीं आती यहाँ पे, तो एक किस्म कह लें कि यूसीपी इज़ द ओनली वन, एंड आई कैन से विद कॉन्फिडेंस कि कोई भी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी इस चीज़ में कर सकती है। तो हमारे फिर जिस हमारे उनके साथ MOUs हैं, तो इतना तो ये कह लें कि ये हैंड्स ऑन या डायरेक्ट एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स को हो जाता है कि वहाँ पे देखते हैं पॉलिसी मेकिंग कैसे हो रही है, और ये देखना जिस तरह एक आपका फॉरेन मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर एक पॉलिसी बना रहा है उसके पीछे जो वर्किंग होती है, ये थिंक टैंक्स के अंदर डिफरेंट पॉलिसीज पे डिबेट और रिसर्च हो रही होती है, तो स्टूडेंट फर्स्ट हैंड वो चीज़ें देख के आता है। प्लस जो हमारे MOUs की वजह से हमारे काफ़ी स्टूडेंट वहाँ पे इंटर्नशिप्स करते हैं, इवन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में भी हमारे स्टूडेंट्स ने इंटर्नशिप की है। तो उससे जो है कह लें वही मैं जिस पहले बात कर रहा था कि सिर्फ हमारा फोकस स्टडीज पे नहीं है, हमारे पर्सनल ग्रूमिंग पे भी है, उन्हें पता हो, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो। तो इस तरह की जो है फिर जो इनके सेमिनार्स वहां पे होते हैं, तो ये किसी हद तक कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज के अंदर तो तकरीबन या कह लें कि काफी यूनिवर्सिटियां करवाती हैं प्राइवेट सेक्टर में खासतौर पर या पब्लिक में भी कुछ, लेकिन हमारी एक फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है और हम कोई भी स्पीकर हो, जिस तरह ये पाकिस्तान एम्बेसडर टू अमेरिका वो था कुछ 6 महीने पहले, ही वाज गोइंग बैक टू US, उसको हमने बुलाया हुआ था, उसने स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट किया, उनको बड़ा अच्छा गाइड किया। तो अब हमारी फ्रीक्वेंसी बहुत है, और दूसरा ये कि हमने एक सोसाइटी बनाई है डिपार्टमेंट के अंदर जो स्टूडेंट्स की है, और दैट इज़ रन बाय स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स से जिस तरह बैठ के कंपेयरिंग करते हैं, गेस्ट को बुलाते हैं, तो उसको भी उनको एक्सपोजर हो जाता है। तो आई वुड से दैट हमारा जो डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर यही है कि एक तो पर्सनल ग्रूमिंग करते हैं हम उनकी इन एडिशन टू नॉलेज, प्लस उनकी जो हमारे जो एफर्ट है, और इन चीज़ों के लिए एफर्ट करनी पड़ती है कि आप इंडस्ट्री लिंकेजेस करें, MOU साइन करें, अपने स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप्स दूसरी चीज़ों के लिए भेजें। तो ये सारी चीज़ें कुछ हमारे हमें इंस्टीट्यूशन सपोर्ट भी उसमें आती है कि यूनिवर्सिटी फंडिंग देती है उसके लिए, जैसे ट्रिप्स के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए, तो वो बड़ा अच्छा एक ओवरऑल जो है पूरा जो है फोकस जो है स्टूडेंट की ग्रूमिंग होती है। तो और जो स्टूडेंट, मैं ये नहीं कहता कि 100% ही हमारे सारे ग्रूम हो जाते हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और बल्कि स्टूडेंट्स के लिए मेरा मैसेज यही होगा कि अगर आपने आपके पास ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं लाइफ में, और जिस UCP जैसे इदारे में अगर आपको होता है, तो किसी ने भी आपको प्लेट में रख के कोई चीज़ नहीं देनी, आपको आपके सामने अपॉर्चुनिटी, आपके पास टीचर भी हैं जिन्होंने फॉरेन क्वालिफिकेशंस की हुई हैं, आपके हर जो भी आप बनना चाहते हैं, लेकिन उनको यूज़ करना ये आप पे। ग्रूमिंग है जिसमें डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं, डिबेटिंग सोसाइटी है, ड्रामेटिक सोसाइटी, डिपार्टमेंट की अपनी सोसाइटी है जिसके अंडर डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेज और सेमिनार्स और चीज़ें होती हैं, तो उसमें ना सिर्फ अपनी ग्रूमिंग कर सकते हैं प्लस उनका फर्दर जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है वो भी हो सकता है। तो जितना वो इन चीज़ों को यूटिलाइज करें उतना उनके जो है आगे सक्सेस का। और लास्ट आई थिंक जो मैं इसमें ऐड करूंगा कि जिस तरह एक मैं अपनी क्लासों में भी कहता हूं कि जिस तरह एक इंजीनियरिंग का है बंदा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, अगर उसको वो जॉब नहीं मिली तो ही जॉबलेस, वो कुछ और नहीं कर सकता। IR की डिग्री का ये फायदा, BS कर लें, MPhil कर लें, कि जी आप मल्टीपल फील्ड्स में जा सकते हैं, आप CSS कर लें, गवर्नमेंट में चले जाएं, आप मीडिया में चले जाएं, वहाँ पे काफ़ी डिमांड है, ऑनलाइन कई चीज़ें हैं जिसमें आप कर सकते हैं, फिर आगे फर्दर स्टडीज़ कर सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, बाहर भी जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं, या ये जो NGOs हैं वहाँ पे हमारे स्टूडेंट जो है इस डिग्री के साथ। लेकिन बॉटम लाइन ये है कि अगर आपको उसमें करना है तो आपको फुली तौर पे अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा उसमें, जो ग्रूमिंग जो जितनी बातें हमने की हैं, तो उनमें स्टूडेंट भी जो यहाँ पे आए ये पहले दिन से करके आए कि जी मैंने अपने आप को ग्रूम इतना करना है, आई वॉन्ट टू बी लीडर ان دا فیلڈ.
1: بالکل سر, آپ نے بجا فرمایا کہ آئی آر میں یو سی بی بہت سی اپورچونیٹیز دیتی ہے. میں خود بھی آئی آر کا اسٹوڈنٹ ہوں, تو میں جب ایڈمیشن لینا تھا تو مجھے یہی پتا تھا کہ سی ایس ایس صرف آئی آر میں ہوتا ہے, تو مجھے سی ایس ایس کرنا نہیں تھا, لیکن پھر مجھے کہیں سے پتا چلا کہ آئی آر کا میڈیا میں بھی اسکوپ ہے, تو مجھے میڈیا میں انٹرسٹ ہے. ابھی بھی میں بیٹھا ہوسٹنگ کر رہا ہوں, تو صرف آئی آر سی ایس ایس کے ریلیٹڈ نہیں ہے. آپ نے بہت اچھا گائیڈ کیا اسٹوڈنٹس کو, بہت خوشی ہوئی یہ سب سن کے. تو سامعین, آج کا پروگرام ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. ملتے ہیں ایک نئے ہفتے میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ, ایک نئے گیسٹ کے ساتھ. سنتے رہیے FM 92.6 UCP کی دنیا. اللہ حافظ.

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

आवाज मुनफरिद, हौसले बुलंद और लगन है सच्ची, इसीलिए तो यूसीपी की दुनिया के साथ ये दोस्ती है पक्की। Keep your ears healthy with FM 92.6.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Union.

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

हम मारिया वास्ती को डिस्कस कर रहे थे, तो उनका जो पहला जो है टेली प्ले हुआ था 1990s में, जो कि बख्तियार अहमद जो है उन्होंने इनको बेसिकली अप्रोच किया था, और उस वक्त PTV में बेसिकली वो था ना कि एक कास्टिंग पर्सन होता है बेसिकली, वो थे और उन्होंने इनको देखा और उन्होंने इनको एक टेली प्ले जो था सारा और अमारा के नाम से, उसमें उन्होंने रेशम जो है द रेशम हमारी इंडस्ट्री में जो अमेजिंग फिल्म एक्ट्रेस हैं उनके साथ इन्होंने इनको कास्ट किया था। और ये जो बेसिकली टेली प्ले था, इट हाईलाइटेड स्टोरी ऑफ टू सिस्टर्स गोइंग थ्रू वो था ना कि अरेंज मैरिजेस जिनकी हो रही होती हैं, तो यंग फीमेल्स इनकी अरेंज मैरिजेस होती हैं और दोनों बहनें होती हैं, उस पर फोकस किया था। और वैसे बात की जाए तो शी हैज़ डन ओवर 50 सीरियल्स अराउंड द सेम नंबर ऑफ असोर्टेड प्लेस, मतलब कि अराउंड 50 ही उन्होंने शोज जो प्लेस जो है वो भी किए हैं और सीरियल्स भी किए हैं। तो आई थिंक दिस इज़ अ ह्यूज अचीवमेंट। और आप बहुत यंग एज में जब आ जाते हो तो इट्स नॉट ईजी कि आप हर चीज़ को साथ साथ बैलेंस करो। और देन अगेन उनको सबसे पहला जो उनका टेली प्ले था वो रेशम के साथ मिला था, तो वही बात है कि शी डिज़र्व्स ऑल ऑफ दिस बिकॉज शी हैज़ वर्कड हार्ड। एंड एक होता है ना कि एक हीरे को पहचान, हीरे की पहचान हो जाती है, तो डेफिनेटली माया वास्ती का ये वाला सीन है। उनके एक्टिंग करियर की बात करें, जिस तरह मैंने पहले बताया कि एक तो ऑब्वियसली टेली प्ले था उनका, उन्होंने वहाँ से 1990s में शुरुआत की थी, फिर उसके बाद उन्होंने डेफिनेटली उनको एक शी वॉज एन आर्टिस्ट एट द एंड ऑफ द डे, तभी वो इस फील्ड में आई, तो उन्होंने अपने पहले जो है अपने आर्ट को उन्होंने थ्रू दीज रोल्स ही उन्होंने एक्सपीरियंस किया था। और उन्होंने डिफरेंट प्लेस किए, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, हर जगह जो PTV बेसिकली यूज टू डू दिस डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे करवाते होते थे, तो वहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया। और फिर उन्होंने जब उन्होंने उनको अंदाज़ा हुआ कि शी कैन डू इट, तो उन्होंने प्रॉपर तरीके से एक्टिंग करियर को अपना, जैसे मैंने पहले कहा, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और उन्होंने ड्रामा इंडस्ट्री में अपने आप को एक्सपेरिमेंट किया। वो बेसिकली जो है उनका एक उनका उनसे पूछा जाए कि अगर उनका मोस्ट मेमोरेबल प्ले कौन सा रहा है, तो शी सेज के बानो कुत्सिया और कल्लो, ये बेसिकली इनके दो प्लेज हुए थे जो इनको अपने अपने बहुत पसंद है इनको। और उसके अलावा इनकी बात की जाए तो जो हम एक था ना रेटिंग्स के तौर पे कि उनके कौन कौन से अच्छे प्लेज गए हैं, उसमें बादलों पर बसेरा जो कि बेसिकली ये भी ऐसी ही एक लड़की की स्टोरी है कि जो शी वॉज फोर्स्ड इनटू अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ मैरिज, और जिसे हमने पहले डिस्कस किया कि शी ऑलवेज डिड दिस काइंड ऑफ प्लेज या दिस काइंड ऑफ रोल्स जो बहुत आउटस्टैंड करें और लोगों को लिंक कर सकें और यूथ को जिससे सीखने का मौका मिले। तो शी ऑलवेज ट्राई टू मीट वो वाली बात कि मैं किसी ऐसे रोल को अदा करूं कि जिससे किसी को फ़ायदा हो। एंड आई थिंक कि हमारी पूरी ड्रामा इंडस्ट्री का बेसिक फोकस यही होना चाहिए कि यू वुड थिंक अबाउट या फिर यू वुड फोकस ऑन सच थिंग्स कि आप उसी को ही आगे लेके चलो और उसी को ही आप परसू करो, क्योंकि हमारा ड्रामा इंडस्ट्री जो उसको बहुत फॉलो किया जाता है और फॉलो इसीलिए किया जाता है क्योंकि दे हैव सच अमेजिंग स्टोरीज। और इन जो ऑब्वियसली इन स्टोरीज पे नहीं फोकस करें, जो फिर वही सास बहू एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स पे फोकस करें, तो उनके लिए ये बात है कि हमारी इंडस्ट्री जो उसको बहुत फॉलो किया जाता है, तो इट्स बेटर कि आप उस प्लेटफॉर्म का फ़ायदा उठाएं और किसी की मदद करें रादर देन यू नो इन्जॉय द फैक्ट के यू नो लड़ाइयाँ हो रही हैं और रोना धोना हो रहा है, बिकॉज वी आर सो डन विद दिस। और आई एम सो ग्लैड ये जो अब इस जनरेशन का एक होता है ना लॉट है, या फिर इवन जो पुरानी जनरेशन है वो भी बहुत थक चुकी है ऐसे ड्रामा देख देख के। और वो भी मुझे मैं अपने पेरेंट्स की बात करूँ तो वो भी मुझे इवन बोलते हैं कि यू नो उस टाइम के ड्रामा जैसा अल्फा ब्रावो चार्ली और इस टाइप के ड्रामास थे वो हट के थे, इसलिए लोगों को वो बहुत पसंद आए, वो बिल्कुल डिफरेंट थे। इसलिए हमें हमारा फोकस बेसिकली जो है उस टाइप के ड्रामास पे होना चाहिए कि जो किसी को फ़ायदा हो, जो मतलब कि किसी की लर्निंग हो सके बेसिकली उनसे। हम माया वासी की बात करें तो शी, जैसे मैंने पहले कहा कि शी इज़ ऑलवेज बीन आउटस्पोकन ऑन डिफरेंट इश्यूज़, और उन्होंने कोशिश की है कि उन्हीं के ऊपर हम फोकस करें, और जैसे वुमेन राइट्स या फिर जेंडर इक्वालिटी, प्रेजुडिस, हरासमेंट, मतलब कि इस टाइप के उन्होंने जो है इशूज़ को हमेशा जो है फोकस किया है, उनके ऊपर हाईलाइट किया है। और उन्हीं इसी तरह के रोल्स जो है इसी टाइप के वुमेन, प्रोमिनेंट वुमेन जिसमें होती हैं जिन ड्रामास में, उस टाइप के उन्होंने रोल्स को फोकस किया है और उन्हीं शोज़ के ऊपर या
انہی ڈراماز کے اوپر بیسکلی انہوں نے

वेलकम बैक लिसनर्स, आप लोगों ने ज्वाइन किया है FM 92.6 UCB की दुनिया को, और आप लोगों को जिसकी आवाज़ सुनाई दे रही है और जिस शो में आप लोगों ने ज्वाइन किया बेसिकली, वो है फातिमा अहमद का शो एक्सक्लूसिव लेजेंड्स। और आज जो है हम लोग मारिया वास्ती को डिस्कस कर रहे हैं, और वक्त जो है वो ऐसे लाइक हर शो में ऐसा होता है कि आप बैठते हो, आप कहते हो अच्छा अभी तो बड़ा टाइम है, और फिर आप बातें करना शुरू करते हो, उसके बाद आप घड़ी की तरफ देखते हो, कहते अच्छा अभी ब्रेक, अच्छा पहली ब्रेक भी आ गई, फिर पहली ब्रेक के बाद दूसरी ब्रेक भी आ जाती है, और ऐसे करते करते शो जो है वो इतने चुटकियों में ख़त्म हो जाता है। और हर शो में मेरा यही गिला रहता है कि यार मैंने तो इतनी बातें करनी थी, मैंने तो ये भी बोलना था, ये भी बोलना था, लेकिन कोई मसला नहीं, हम लोग जो है अगले शो पे ये सब, मैं हर शो की तरह अगले शो पे मैं ये सारी बातें रख दूंगी। हम लोग मारिया वास्ती को डिस्कस कर रहे हैं आज, और मारिया वास्ती की हमने बेसिक सारी इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर ली है। अब मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि मारिया वास्ती का जो फिल्मोग्राफी, बेसिकली उनको बताऊंगी कि उन्होंने कितने ड्रामास किए हैं, कौन कौन से ड्रामास किए हैं उन्होंने, कौन कौन से टेली प्लेज या फिर उन्होंने थिएटर जो है उन्होंने कहाँ कहाँ बेसिकली कैसे कैसे और कौन कौन से रोल्स जो हैं उन्होंने अदा किए हैं। और इट्स अ लॉन्ग लिस्ट, जैसा मैंने पहले कहा था कि ऑब्वियसली शी इज़ बिन वर्किंग फॉर सो लॉन्ग, लेकिन मज़े की बात यह कि इनके जो ड्रामास जब मैं बोलूँगी ना, इनके नाम बोलूँगी, तो आप लोग खुद लिंक कर सकेंगे कि उन्होंने किस तरह के रोल्स जो हैं थ्रू आउट हर स्पैन ऑफ एक्टिंग उन्होंने अदा किए हैं। स्टार्ट करें फ्रॉम 1997, तो उन्होंने आशियाना किया, फिर एहसास, औरत का घर कौन सा, मतलब कि इस नाम से अंदाज़ा हो जाता है कि क्या बात हो रही है। फिर उसके अलावा बादलों पर बसेरा, जिसमें हमने पहले डिस्कस किया, उनका पहला जो एक होता है ना कि क्रिटिकली क्लेम जो इनका ड्रामा सीरीज जो थी वो बेसिकली ये थी। उसके अलावा बब्बन खाला की बेटियां, बूटा फ्रॉम टोबा टेक सिंह जो है वो आई डोंट नो मंटो वाला है कि लाइक द टोबा टेक सिंह जो जगह है वो उससे रिलेटेड है, ये 2000 में किया था उन्होंने। उसके अलावा फिर उन्होंने धड़कन की, उसके अलावा काली आंखें, फिर कभी कभी इनका 2013 में आया इनका ड्रामा, फिर ये बेसिकली ड्रामा सीरियल्स के मैं लिस्ट आप लोगों को बता रही हूँ। फिर नींद किया, सारा और अमारा जो इनका, ये जो इन्होंने 1999 में किया था, और ये जो है जिससे हमने पहले बताया कि रेशम के साथ इन्होंने ये ड्रामा किया था। फिर बारिश के आंसू, बहकावा, बोझ, बुरी औरत, दिल, ये एक टीवी सीरीज था। फिर उसके अलावा जलेबियाँ, कैसे हुए बेनाम, कलमूही, खुदा की बस्ती, ये रीमेक था बेसिकली एक पुराने काम का बेसिकली। उसके अलावा कुछ दिल ने कहा, कौन, ये भी एक ड्रामा था जो इन शी अपीयर्ड इन एपिसोड 6 ऑफ एयर, ये भी वो जैसे होते हैं ना कि ड्रामा सीरीज होते हैं वैसा था। फिर उसके अलावा मलका आलिया, जो कि मैंने डेफिनेटली देखा था और उसको भी हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। मालकिन इन्होंने किया, नेक परवीन, रुस्वा, शीशे का महल, फिर उसके अलावा उन्होंने TV3 कराची उन्होंने किया, कोर्ट रूम, आंगन भर चांदनी, ए इश्क हमें बर्बाद ना कर, बैंड बजेगा ओके। उसके अलावा अच्छा बड़ा मुश्किल होता है जब आपको जो चीज़ उर्दू में लिखी, मतलब कि उर्दू में हो लेकिन वो रोमन में लिखी हो ना, उसको पढ़ना बहुत, लोगों की टेक्स्टिंग, हर किसी का टेक्स्टिंग स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट होता है, तो इट ऑलवेज टेक्स मी टाइम किसी नए बंदे से बात करना या मतलब कि उसकी कन्वर्सेशन को समझना। उसके अलावा दिया जले, खानदान, खोट, कितनी गिरहें बाकी हैं इसका Season 1 and 2, लव के लिए रिहाई, थोड़ी दूर साथ चलो, वो चार, धुन, सिसकियाँ, एक और सितम, और भूख, मूरत, रियासत, तेरे लिए, तेरी चाह में, मतलब कि इस टाइम मेरी लाडली, ये वाले जो हैं बेसिकली इन्होंने ड्रामास किया। अब हम इसमें करते हैं कि एक म्यूजिकल ब्रेक पे चलते हैं, उसके बाद हम वापस आके मैं आई वुड लव कि आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों ने कनेक्ट किया कि हाउ, किस तरह के ड्रामास बेसिकली शी फोकसेस ऑन और शी लाइक्स टू डू। सो वी विल बी राइट बैक।

0: नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 92.6 यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की दुनिया।
1: वेलकम बैक लिसनर्स, आप लोगों ने ज्वाइन किया है फातिमा अहमद को एक्सक्लूसिव लेजेंड्स में, और आज हम लोग मारिया वास्ती को डिस्कस कर रहे थे। और व्हाट आई हैव बेसिकली लर्न्ड फ्रॉम हर इज दैट यू नो यू शुड, जैसे मैंने पहले लिंक में ही बोल दिया था कि यू नो आप जब इनके लिस्ट को डिस्कवर करोगे तो आप लोगों को अंदाजा होगा कि शी वॉन्ट्स टू डू दिस काइंड ऑफ ड्रामाज विच always makes you, you know, think about our society and कोई lesson होता है उनमें, and आप कुछ basically निकाल सको, कोई crux निकाल सको and उस पर काम कर सको। तो basically मारिया वास्ती ने focus इसी type के dramas पर किया है, और उनसे उनकी राय basically जब इन dramas या फिर इसके बारे में बात की, उनसे basically उनके topics को discuss किया, तो she always have been like you know इस type के shows या इस type के ड्रामाज या इशू ओरिएंटेड फिल्म्स करनी चाहिए ताकि लोगों को अवेयरनेस हो। और उन्होंने कहा कि अब तो ऑब्वियसली सोशल इश्यूज़ को बहुत ज़्यादा डिस्कस कर लिया है कि लाइक औरतों के ऊपर, लेकिन शी नाउ लाइक फोकसेस ऑन पीपल के वो ड्रग्स या फिर मतलब कि डिफरेंट बीमारियां जो हो रही हैं उनको, उनसे रिलेटेड बेसिकली शोज या फिर ड्रामास किए जाएं कि उस चीज़ को फोकस किया जाए कि जो बहुत सेंसिटिव है हमारी सोसाइटी में, और पीपल डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, लेकिन वी शुड टॉक अबाउट दैम बिकॉज दे आर इम्पॉर्टेंट, एंड नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट बट दे आर नेसेसरी फॉर अस टू टॉक अबाउट। और उसके अलावा उन्होंने जैसा मैंने पहले बताया कि उन्होंने एक प्रोडक्शन हाउस भी अपना 2002 में अपना लॉन्च किया था, और शी हैज बीन सक्सेसफुली रनिंग इट, और डिफरेंट उन्होंने सीरियल्स और प्लेस जो हैं प्रोड्यूस की हैं अंडर दैट नेम। और वही बात है कि जब आपका माइंड सेट होता है एंड यू नो व्हाट यू वांट टू डू, तो फिर आप उस पर फोकस करो रादर देन किसी और के ऊपर रिलाय करो। तो अब जैसे ऑब्वियसली शी अर्नड अ लॉट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस एक्सपीरियंस एंड शी अर्नड इट, एंड उन्होंने उसका अच्छा इस्तेमाल किया, एक अच्छी जगह उन्होंने उसको इन्वेस्ट किया ताकि जहाँ से लोगों को फ़ायदा हो। खैर इस वक्त जो है रिसेंटली शी इज़ डूइंग अ गेम शो जिसका नाम है करोड़ों में खेल, और ये शो मैंने देखा है। बेसिकली जनरल नॉलेज का क्वेश्चन होते हैं इसमें, एंड ऑडियंस में से किसी को चूज करते हैं, इफ दे कीप ऑन आंसरिंग राइट दे कीप ऑन विनिंग। तो वही बात है कि यू नो इफ इवन इफ शी इज डूइंग अ गेम शो, बिकॉज गेम शोज आर लाइक, अगर हमारे आम बात की जाए तो गेम शोज हमारे बड़े हैपनिंग एंटरटेनिंग होते हैं, जो फोकस नहीं करते कि किसी को फ़ायदा हो बेसिकली किसी शो से, किसी गेम शो से स्पेसिफिकली। बट शी इज डूइंग दिस काइंड ऑफ गेम शो जैसे लोगों की जनरल नॉलेज में इजाफा होगा और लोग जो है सीखेंगे इससे। तो इनकी बेसिकली पूरी जो सक्सेस स्टोरी है उसे हम यही निकाल सकते हैं कि शी इज़ नॉट ओनली फोकस्ड ऑन इश्यूज एंड फोकस्ड ऑन लाइक इम्प्रूविंग पीपल्स लाइफ, बट उन्होंने इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी की है। सिर्फ उन्होंने इशू पे बात नहीं की बल्कि उन्होंने इसके ऊपर काम भी किया है। और वो कहते हैं ना कि कहने जोगी हैं कि यू नो शी हैज डन समथिंग फॉर द सोसाइटी एंड फॉर द इंडस्ट्री, एंड दिस इज व्हाट वी नीड इन आवर सोसाइटी। हमारी इंडस्ट्री में ऐसे लोग चाहिए जो कि हमारी इंडस्ट्री को बेहतर करें रादर देन इंजॉयमेंट जो है वो उसको ना साइड पे ही रखे। खैर आप सबका हमें ज्वाइन करने का बहुत बहुत शुक्रिया, आज बहुत मज़ा आया डिस्कस करने का, और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी एंड FM 92.6। कीप लिसनिंग टू FM 92.6 एंड थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।

www.lucifer.edu.au. FM 92.6 Life Station of the Nation.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

0: एंड न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरी को होस्ट
3: आरजे फाद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन,
0: ओनली ऑन वन प्लेस। देन स्टे ट्यून्ड 92.6।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP ki duniya.

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: एक नई सोच,
1: एक नई पहचान,
0: एक नई लगन।
1: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
0: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से।
1: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
0: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में यूसीपी नंबर वन।
1: जब मिलती है लगन,
0: मेहनत,
1: कामयाबी और खुलूस,
0: तो बनती है यूसीपी की दुनिया। आप सुन रहे हैं FM 92.6।
1: सुनते रहिए।

आवाज मुनफरिद, हौसले बुलंद और लगन है सच्ची, इसीलिए तो यूसीपी की दुनिया के साथ ये दोस्ती है पक्की। कीप योर ईयर्स हेल्दी विद एफएम 92.6।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

डेंगू मच्छर पानी में जन्म लेता है। इसकी अफजाइश के मराहिल से मुकम्मल आगाही डेंगू के खात्मे के लिए जरूरी है, लिहाजा पानी की टैंकी और ड्रम वगैरह जिनमें साफ पानी हो अच्छी तरह ढांप कर रखें। इसके अलावा घर, दफातर, दुकानों और किसी जगह कूड़ा करकट या फालतू अशिया जमा ना होने दें। घरों में मच्छर मार और लार्वा कश केमिकल का स्प्रे करवाएं। इस्तेमाल शुदा बोतलों, प्लास्टिक के थैलों और इस्तेमाल शुदा टायरों में हरगिज पानी जमा ना होने दें। माहौल खुश्क और साफ, डेंगू से मुकम्मल निजात। ये पब्लिक सर्विस मैसेज महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के तआवुन से पेश किया जा रहा है।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: And now, you are going to listen an exclusive documentary on 92.6 FM UCP Ki Duniya.
1: आप सुन रहे हैं हमारी आवाज़, हमारी पहचान, FM 92.6.

0: 96 बोरियत को भगा दो।
1: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: मुझे डायबिटीज? मैं तो बड़ा फिट हूँ। डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है।
1: हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
2: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
3: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।

मोबाइल डिवाइस की पीटीए से तस्दीक के मुतालिक जानने के लिए खरीदते वक्त सबसे पहले इसका 15 हिस्सों का IMEI नंबर *#06# डायल करके मालूम करें और फिर IMEI नंबर 8484 पर SMS करें या वेबसाइट से चेक कर लें कि ये डिवाइस पीटीए से तस्दीक शुदा है। पीटीए

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: कुछ जालसाज आपको फ्री सिम कार्ड, मुफ्त फोन कनेक्शन या राशन का लालच देकर आपके फिंगरप्रिंट्स हासिल कर सकते हैं। ये कीमती डेटा गैर कानूनी सरगर्मियों में इस्तेमाल किया जा सकता है, लिहाजा फिंगरप्रिंट्स देते हुए मोहतात रहें। अपने शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड सिमों की तादाद जानने के लिए शनाख्ती कार्ड नंबर 668 पर SMS करें या www.cnic.sims.bk पर चेक करें।
1: आप सुन रहे हैं University of Central Punjab FM 92.0।

आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: मोबाइल डिवाइस की पीटीए से तस्दीक के मुतालिक जानने के लिए खरीदते वक्त सबसे पहले इसका 15 हिस्सों का IMEI नंबर *#06# डायल करके मालूम करें और फिर IMEI नंबर 8484 पर SMS करें या वेबसाइट से चेक कर लें कि ये डिवाइस पीटीए से तस्दीक शुदा है। पीटीए,
1: ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की, तो सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: कुछ जालसाज आपको फ्री सिम कार्ड, मुफ्त फोन कनेक्शन या राशन का लालच देकर आपके फिंगरप्रिंट्स हासिल कर सकते हैं। ये कीमती डेटा गैर कानूनी सरगर्मियों में इस्तेमाल किया जा सकता है, लिहाजा फिंगरप्रिंट्स देते हुए मोहतात रहें। अपने शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड सिमों की तादाद जानने के लिए शनाख्ती कार्ड नंबर 668 पर SMS करें या www.cnic.sims.bk पर चेक करें।
1: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखा दही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम हैं। इस तरह की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
2: ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: Broadcasting from University Studios,
1: where knowledge is empowerment.
0: This is
2: 92.6.
3: जी तो लिसनर्स, ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और अब हम करते हैं डॉक्टर वहीद से मजीद गुफ्तगु। सर, आप अपना PhD वगैरह के रिलेटेड और IR की डिग्री के रिलेटेड बता रहे थे, किसका क्या बेसिकली है क्या, तो उसको आप थोड़ा रैप अप करेंगे इस बात।
4: हाँ जी, अच्छा जी, मैं ये अभी बात हो रही थी कि जी हमने UCP में MPhil शुरू किया, तकरीबन 3 साल हो गए हैं अब उसको, हमारे कई बैचेस ग्रेजुएट भी हो चुके हैं और PhD हमने 1 साल हो गया शुरू की है। तो ओवरऑल जो है, किसी भी डिपार्टमेंट की स्ट्रेंथ यही होती है कि उसमें कितना रिसर्च है, रिसर्च कल्चर है, क्योंकि जो हमारे PhD के और मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं ये भी गाइड करते हैं अपना स्टूडेंट्स को, BS को भी, तो आपके ओवरऑल डिपार्टमेंट की स्ट्रेंथ इसी में होती है कि उसमें मास्टर्स और PhD के प्रोग्राम्स भी होने चाहिए। तो ये बड़ी एक लिहाज से कह लें कि कंपेयर टू मैनी अदर डिपार्टमेंट्स इन पाकिस्तान, ये बड़ी अचीवमेंट थी UCP के लिए। तो बड़ा अच्छा है, उससे बड़ा अच्छा कल्चर डेवलप होता है, रिसर्च और इनोवेशन की तरफ चलते हैं। दूसरा, हमने नया इनिशिएटिव शुरू किया था BS पॉलिटिकल साइंस का रिसेंटली, 1 साल तकरीबन दूसरा साल कंप्लीट होने वाला है, तो उसमें बड़ा अच्छा रिस्पांस है। उसमें भी ज़्यादातर ये डोमेस्टिक जो है पॉलिटिकल जो फैक्टर्स हैं उस पे भी एक डिग्री के ऑप्शन है। तो डिपार्टमेंट ओवरऑल ड्यूरिंग माई 5 ईयर्स हमने बड़ी एफर्ट करके इसको ग्रो किया है। बाकी आगे फर्दर बातें करेंगे, हमने जैसे दूसरी चीज़ें हैं, सेमिनार्स करवाते हैं, कॉन्फ्रेंसेस, वो उस पर भी वी विल डिस्कस शॉर्ट।
3: सर, जब हम दूसरी फैकल्टीज की बात करते हैं या उनके टीचर्स के साथ बात करते हैं, तो वो भी हमें आके बताते हैं कि उनकी फैकल्टी में फॉरेन स्टाफ कितना है, फॉरेन स्टडी किया हुआ स्टाफ कितना है, तो IR के डिपार्टमेंट में फॉरेन फैकल्टी कितनी है?
4: हमारी तकरीबन जो है ये कह लें कि 40% के करीब जो है फैकल्टी, हमारे टोटल तकरीबन हमारे 14-15 करीब फैकल्टी मेंबर्स हैं, उनमें तकरीबन 40% जो है फॉरेन क्वालिफाइड हैं। मेरी अपनी PhD अमेरिका से है, हमारे एक और एसोसिएट प्रोफेसर हैं डॉक्टर शहजाद, उनकी PhD न्यूजीलैंड से है, फिर इसी तरह चाइना से PhD है एक, फिर हमारे मास्टर्स काफ़ी लोगों ने किया इंग्लैंड से, तो बड़े अच्छे इदारों से। तो वो भी जो है, इससे ये होता है कि आपको एक इंटरनेशनल एक्सपोजर भी आता है और फिर ये अपना लोकल भी जो डिग्रीज हैं बड़ा अच्छे इदारों से हमने हायर किए हैं, तो जिस तरह कायदा यूनिवर्सिटी से, गवर्नमेंट कॉलेज से, इस तरह। तो बड़ा अच्छा एक उसमें हमने कोशिश की है कि, और ये इन एडिशन टू जो रिसर्च कल्चर इन एनी डिपार्टमेंट, बाकी जो मैं ये हर कोई एग्री करेगा कि फैकल्टी की स्ट्रेंथ जो है, उनकी क्वालिफिकेशन कैसी है, कहाँ से है और कितने कैपेबल हैं, तो वो बड़ा ज़रूरी है। तो इस पे हमने बहुत ज़्यादा फोकस रखा है कि, और उसका रिजल्ट भी हमें अच्छे आ रहे हैं। देखें, MPhil हमने शुरू कर दिया, PhD शुरू कर दिया, तो वी आर गेटिंग वेरी गुड रिजल्ट्स आउट ऑफ दैट। तो जब आपकी अच्छी टीम होगी तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा।
3: सर, जैसे दूसरे डिपार्टमेंट्स में लैब्स वगैरह होती हैं, जैसे डी फार्म वालों की फार्मेसी की लैब होती है, मीडिया वालों के पास प्रोडक्शन हाउस होता है, IR के स्टूडेंट्स के बाद प्रैक्टिकल वर्क करने के लिए क्या होता है?
4: अच्छा, इसमें थोड़ा सा ये है, जिस तरह CSS के लिए हम कहते हैं ये IR की डिग्री है, उसके लिए ये हर डिग्री की अपनी एक नेचर होती है। जिस तरह एक नेचुरल साइंस है, आप बायोलॉजी की डिग्री, आपने फॉर एग्जांपल लैब में काम करना है सारी उम्र, तो लैब की ट्रेनिंग आपको ज़रूरी है। लेकिन हम जो प्रिपेयर करते हैं या इंटरनेशनल रिलेशंस के जो स्टूडेंट्स हैं, इनको मल्टीपल जो है फील्ड्स में, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उनके ऐसे स्किल्स डेवलप किए जाएँ जो उनको, जिस तरह CSS के लिए है, उनको एक तो वो नॉलेज हो गवर्नमेंट्स, हाउ डू गवर्नमेंट्स ऑपरेट एंड हाउ डज इंटरनेशनल सिस्टम वर्क, और पाकिस्तान की पोजीशन इंटरनेशनल लेवल पे क्या है, इस तरह की चीज़ें। दीज आर ऑल रेलिवेंट क्वेश्चंस इन CSS के एग्जाम में ज़्यादातर चीज़ें, बल्कि 200 नंबर का वहाँ पे कंपलसरी इंटरनेशनल रिलेशंस का सब्जेक्ट होता है, और बाकी भी कई सब्जेक्ट्स में इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिकल साइंस के रिलेटेड जो चीज़ें हैं गवर्नमेंट की, क्योंकि दैट इज़ यू आर अप्लाइंग फॉर गवर्नमेंट जॉब, तो गवर्नमेंट के रिलेटेड नॉट ओनली डोमेस्टिक बट इंटरनेशनल लेवल पे भी जो चीज़ें हैं उसके लिए ग्रूमिंग हम की जाती है। तो कैसे करते हैं, तो बेस्ट तो हम ये करते हैं कि एक तो उनका जो नॉलेज है उसमें, BS कर लें, आगे 4 साल का है डिग्री, उसमें बड़ा डेप्थ में जाके हम चीज़ें, थ्योरेटिकल नॉलेज भी होता है, प्रैक्टिकल चीज़ें भी, एक तो नॉलेज उनको ये है कि उनके जिस CGPA जिसे कहते हैं या उनके ग्रेड्स जो हैं वो बड़े अच्छे होने चाहिए। तो किसी भी स्टूडेंट अगर वो इसमें कर रहा है तो पहली तो चीज होती है कि नॉलेज उनको होना चाहिए। हाउ डू डज गवर्नमेंट वर्क एट डोमेस्टिक लेवल एंड हाउ डज इट वर्क एट इंटरनेशनल लेवल। तो ये तो पहली तो हम यही होते हैं कि स्टूडेंट्स को आप अपनी स्टडीज पे फोकस करें, आपको इसका चीज का एक नॉलेज आपको पूरा होना चाहिए। पाकिस्तान में रहना है या गवर्नमेंट में जाना है या बाहर जाना है आपने, तो वो दूसरा फोकस होता है हमारा। हमारी डिग्री वी प्रिपेयर लीडर्स, तो हम उनके लीडरशिप स्किल्स के लिए करते हैं। CSS करके या गवर्नमेंट में वैसे भी अगर आपने आना है तो यू आर ए लीडर। तो कंपेयर टू हम एक जिस तरह कह लेंगे एक सिविल इंजीनियरिंग है तो उसने सिर्फ उसी अपने फील्ड में करना है, इसमें जरा ब्रॉडर आपका, तो उसका आपका स्कोप भी ब्रॉडर हो जाता है उसमें। तो हमने जैसा हर क्लास में रिक्वायरमेंट होती है कि एक रिसर्च कंपोनेंट होता है, उन्होंने किसी एक प्रॉब्लम को इंटरनेशनल प्रॉब्लम को लेके उस पर रिसर्च करनी होती है या प्रेजेंटेशंस तकरीबन हर क्लास में होती है। तो स्टूडेंट हमारे 35-40 क्लासें पढ़ते हैं BS में, तो हर क्लास में जब वो बार बार प्रेजेंटेशंस और ये चीज़ें करते हैं तो उससे उनके जो स्किल्स हैं डेवलप होते हैं, जो उनके मार्केट में कल को देखें। डिग्री तो आपको एक कह लें कि जिस CSS है आप अप्लाई कर सकते हैं या एग्जाम में बैठ सकते हैं, लेकिन उसमें कामयाबी जो है या किसी भी और जॉब के लिए आप जाते हैं तो कामयाबी आपके जो स्किल्स हैं, आपको बोलने का कॉन्फिडेंस, आपको प्रेजेंटेशंस और ये चीज़ें, तो डिग्री आपको डोर के अंदर ले जाएगी इंटरव्यू रूम में, लेकिन वहाँ परफॉर्म जो है वो आपने अपने स्किल्स के। तो हमारी पूरी कोशिश होती है उन स्किल्स को डेवलप किया जाए, तो उसमें प्रेजेंटेशंस आ जाती हैं। फिर हम जो हमारे MOUs भी हैं, थिंक टैंक्स हैं इस्लामाबाद में, इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटजिक स्टडीज़ है, ये सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज़ है, लाहौर के अंदर है CAS है, सेंटर फॉर एयरोस्पेस एंड स्ट्रेटजिक स्टडीज़, इन सब के साथ हमारी कोलेबोरेशन है। हमारे स्टूडेंट वहाँ उनके जो सेमिनार्स होते हैं वहाँ भी जाते हैं, अपना हमारा एक ट्रिप होता है साल में स्टूडेंट्स को, BS के स्टूडेंट्स को हम वहाँ भेजते हैं ताकि वो उनको जो प्रैक्टिकली जो है पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी और ये सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट लेवल पे हो रही हैं, हमारे स्टूडेंट मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में भी जाते हैं ड्यूरिंग दैट ट्रिप, बल्कि नेशनल असेंबली और ये चीज़ें। तो कंपेयर टू कह लें कि अगर कहीं और भी डिग्री हो रही है IR की, तो UCP इसमें हमने एक एज लिया है कि हम कनेक्शन जो है इस्लामाबाद और ये वो स्टूडेंट्स को, और जिसे इंडस्ट्रियल लिंकेजेस कहते हैं, तो वो काफ़ी स्ट्रांग हद तक जो है काफ़ी इदारों के साथ। फिर हमारे ये जो कुछ चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ हैं, टर्की के यूनिवर्सिटी है, उनके साथ MOUs भी साइन किए हुए हैं, तो हमारे स्टूडेंट्स वहाँ जा सकते हैं। तो उसके अलावा ये यूनिवर्सिटी लेवल पे हमने ये सोसाइटीज़ हैं डिफरेंट, हमारी डिबेटिंग सोसाइटी है और इस तरह की और सोसाइटीज़ हैं, ड्रामेटिक सोसाइटी, तो उसमें भी ये है कि हमारे स्टूडेंट्स को बात कर

0: अच्छा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जी। मैंने पब्लिक सेक्टर में खुद पढ़ा भी हूँ और इंटरेक्शन भी रहता है, तो कई यूनिवर्सिटियाँ या कॉलेजेस ऐसे होते हैं जहाँ पे बीएस या मास्टर्स भी हो रहा होता है, लेकिन वहाँ पे टीचर्स क्लास में नहीं जाता और उस पर कोई उसमें उससे पूछताछ नहीं की जाती और ये वो, तो लेकिन इस वाले से यूसीपी का बड़ा अच्छा कल्चर है, बल्कि इससे कह लेंगे हमारे जैसा पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस से ही वो कंटिन्यू करता है कि जी ये इस पे टॉलरेंस नहीं है टीचर के लिए भी और स्टूडेंट के लिए भी कि दे शुड बी एब्सेंट फ्रॉम क्लास, तो उसके लिए बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। जिस तरह वो अटेंडेंस का है, उन्होंने लाजमी आना है, अटेंडेंस लाजमी होनी है, क्लासरूम के अंदर ही पॉसिबल है अटेंडेंस क्योंकि वो कंप्यूटर की वजह से, तो ना टीचर ना स्टूडेंट उनके लिए कोई रूम नहीं है क्लासेस का छोड़ने का, तो इससे जो इंश्योर करता है कि स्टूडेंट और टीचर दोनों दे शुड बी प्रेजेंट इन द क्लास। फॉर एग्जाम्पल अगर एक टीचर 10 मिनट भी क्लास में लेट होता है उसको कॉल चली जाती है कि जी आपकी क्लास शुरू क्यों नहीं हुई, तो ये आई रियली अप्रिशिएट कंपेयर टू अदर इंस्टीट्यूशंस इन पाकिस्तान के जी इसमें जो डिसिप्लिन का बड़ा अच्छा रोल है। तो इससे ये होता है कि टीचर को पता है मैंने क्लास में जाना है, स्टूडेंट्स को भी पता है, तो वो जो अपना ये होता है कि क्लास हो ही नहीं रही या टीचर ने कहा अच्छा जी महीने में एक क्लास ले ली, तो वो कल्चर बिल्कुल नहीं है, उससे बड़ा अच्छा एक इंटरेक्शन में एक तो ये आ जाती है। फिर क्लासरूम में जो जिस तरह हमारे टीचर उसमें फिर यही आ जाता है कि टीचर जितने क्वालिफाइड होंगे उतना वो स्टूडेंट्स को आगे गाइड कर सकेंगे, तो कोशिश तो की जाती है। वैसे तो क्लास का साइज मैक्सिमम 40 के करीब रखा है, 40-45, लेकिन नॉर्मली एवरेज क्लास 20-25 तक एवरेज स्टूडेंट की होती है, तो टीचर का डायरेक्ट जो है इंटरेक्शन उसमें, खासतौर पर जो आपके डिसिप्लिन रिलेटेड सब्जेक्ट, क्योंकि इसमें हमारे कुछ पाकिस्तान स्टडीज़ है जिस तरह इस्लामिया था, इंग्लिश है, कुछ एडिशनल कोर्सेज भी होते हैं, लेकिन जो सब्जेक्ट रिलेटेड है उसमें कोशिश होती है कि पूरी टीचर जो है इंटरेक्शन, टीचर इंटरेक्शन ये कि तकरीबन हर क्लास में एक तो जिस तरह प्रेजेंटेशन है, फिर हर क्लास में एक डिस्कशन का होता है, सिर्फ टीचर लेक्चर नहीं देता, लेक्चर के साथ डिस्कशंस भी होती हैं, ये सारी चीज़ें, तो ना सिर्फ टीचर देमसेल्स, लेकिन जिस मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट था तो मैंने भी क्लासों में विजिट करके इंश्योर करना था कि टीचर जो है किसी स्टूडेंट को इग्नोर नहीं कर रहा और सबको इन्वॉल्व करके सबसे क्वेश्चन पूछ के या उनको करके, तो ये कुछ तो जिस इंस्टीट्यूशन लेवल पे है कि जी स्टूडेंट और या टीचर जो क्लास है उसको लाजमी आना है, और फिर जिस हमने आगे फर्दर रखा है कि हर स्टूडेंट को इन्वॉल्व करना है ताकि उनकी जो है ग्रूमिंग अच्छी तरह हो सके थ्रू आउट देयर स्टे एट यूसीपी, तो इससे एक बड़ा अच्छा जो है ना स्टूडेंट हमारे बड़ा ग्रूम होके निकलते हैं।
1: सर आखिर में एक सवाल और सबसे जरूरी सवाल जो कि हर एक को सुनना चाहता है कि आखिर यूसीपी ही क्यों?
0: हाँ जी चलें, ये बड़ा मैं काफी हद तक हमने कुछ
1: बाकी भी प्राइवेट सेक्टर्स पब्लिक सेक्टर्स आईआर करवाते हैं, लेकिन यूसीपी के आईआर डिपार्टमेंट्स की ऐसी क्या खासियत है?
0: अच्छा, इसमें ये है जो बिल्कुल डिस्टिंग्विशिंग एक सबसे है कि जिस तरह हमारा अब हम जाते हैं ट्रिप लेके हर साल स्टूडेंट्स का जो इस्लामाबाद में डिफरेंट थिंक टैंक्स, कम से कम 4-5 थिंक टैंक्स हैं जहाँ पे पॉलिसीज बनती हैं, फॉरेन पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसी, तो ये कह लें कि पूरे पाकिस्तान में, और हम जब जाते भी हैं कि वो कहते हैं जी पाकिस्तान से और कोई यूनिवर्सिटी नहीं आती यहाँ पे, तो एक किस्म कह लें कि यूसीपी इज़ द ओनली वन एंड आई कैन से विद कॉन्फिडेंस कि कोई भी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी इस चीज़ में कर सकती है, तो हमारे फिर जिस तरह हमारे उनके साथ MOUs हैं, तो इतना तो ये कह लें कि ये हैंड्स ऑन या डायरेक्ट एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स को हो जाता है कि वहाँ पे देखते हैं पॉलिसी मेकिंग कैसे हो रही है, और ये देखना जिस तरह एक आपका फॉरेन मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर एक पॉलिसी बना रहा है उसके पीछे जो वर्किंग होती है, ये थिंक टैंक्स के अंदर डिफरेंट पॉलिसीज पे डिबेट और रिसर्च हो रही होती है, तो स्टूडेंट फर्स्ट हैंड वो चीज़ें देख के आता है। प्लस जो हमारे MOUs की वजह से हमारे काफ़ी स्टूडेंट वहाँ पे इंटर्नशिप्स करते हैं, इवन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में भी हमारे स्टूडेंट्स ने इंटर्नशिप की है, तो उससे जो है कह लें वही मैं जिस पहले बात कर रहा था कि सिर्फ हमारा फोकस स्टडीज पे नहीं है, हमारे पर्सनल ग्रूमिंग पे भी है, उन्हें पता हो, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो, तो इस तरह की जो है फिर जो इनके सेमिनार्स वहाँ पे होते हैं, तो ये किसी हद तक कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज के अंदर तो तकरीबन या कह लें कि काफ़ी यूनिवर्सिटियाँ करवाती हैं प्राइवेट सेक्टर में खासतौर पर या पब्लिक में भी कुछ, लेकिन हमारी एक फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है और हम कोई भी स्पीकर हो, जिस तरह ये पाकिस्तान एम्बेसडर टू अमेरिका वो था कुछ 6 महीने पहले, ही वाज गोइंग बैक टू US, उसको हमने बुलाया हुआ था, उसने स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट किया, उनको बड़ा अच्छा गाइड किया, तो अब हमारी फ्रीक्वेंसी बहुत है। और दूसरा ये कि हमने एक सोसाइटी बनाई है डिपार्टमेंट के अंदर जो स्टूडेंट्स की है और दैट इज़ रन बाय स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ही जिस तरह बैठ के कंपेयरिंग करते हैं, गेस्ट को बुलाते हैं, तो उसको भी उनको एक्सपोजर हो जाता है। तो आई वुड से दैट हमारा जो डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर यही है कि एक तो पर्सनल ग्रूमिंग करते हैं हम उनकी इन एडिशन टू नॉलेज, प्लस उनकी जो जो हमारे जो एफर्ट है, और इन चीज़ों के लिए एफर्ट करनी पड़ती है कि आप इंडस्ट्रियल लिंकेजेस करें, MOUs साइन करें, अपने स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप्स दूसरी चीज़ों के लिए भेजें। तो ये सारी चीज़ें कुछ हमारे हमें इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट भी उसमें आती है कि यूनिवर्सिटी फंडिंग देती है उसके लिए, जैसे ट्रिप्स के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए, तो वो बड़ा अच्छा एक ओवरऑल जो है पूरा जो है फोकस जो है स्टूडेंट की ग्रूमिंग होती है। तो और जो स्टूडेंट, मैं ये नहीं कहता कि 100% ही हमारे सारे ग्रूम हो जाते हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज हैं, और बल्कि स्टूडेंट्स के लिए मेरा मैसेज यही होगा कि अगर आपने आपके पास ये अपॉर्चुनिटीज हैं लाइफ में, और जैसे UCP जैसे इदारे में अगर आपको होता है, तो किसी ने भी आपको प्लेट में रख के कोई चीज़ नहीं देनी, आपको आपके सामने अपॉर्चुनिटी, आपके पास टीचर भी हैं जिन्होंने फॉरेन क्वालिफिकेशंस की हुई हैं, आपके हर चीज, हर जो भी आप बनना चाहते हैं, लेकिन उनको यूज़ करना ये आप पे ग्रूमिंग है, जिसमें डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं, डिबेटिंग सोसाइटी है, ड्रामेटिक सोसाइटी, डिपार्टमेंट की अपनी सोसाइटी है जिसके अंडर डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेज और सेमिनार्स और चीज़ें होती हैं, तो उसमें ना सिर्फ अपनी ग्रूमिंग कर सकते हैं प्लस उनका फर्दर जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है वो भी हो सकता है। तो जितना वो इन चीज़ों को यूटिलाइज करें उतना उनके जो है आगे सक्सेस का। और लास्ट आई थिंक जो मैं इसमें ऐड करूंगा कि जिस तरह एक मैं अपने क्लासों में भी कहता हूं कि जिस तरह एक इंजीनियरिंग का है बंदा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, अगर उसको वो जॉब नहीं मिली तो ही जॉबलेस, वो कुछ और नहीं कर सकता। IR की डिग्री का ये फायदा, BS कर लें, MPhil कर लें, कि जी आप मल्टीपल फील्ड्स में जा सकते हैं, आप CSS कर लें, गवर्नमेंट में चले जाएं, आप मीडिया में चले जाएं, वहां पे काफी डिमांड है, ऑनलाइन कई चीजें हैं जिसमें आप कर सकते हैं, फिर आगे फर्दर स्टडीज कर सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, बाहर भी जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं, या ये जो NGOs हैं वहां पे हमारे स्टूडेंट जो है इस डिग्री के साथ। लेकिन बॉटम लाइन ये है कि अगर आपको उसमें करना है तो आपको आप फुली तौर पे अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा उसमें, जो ग्रूमिंग जो जितनी बातें हमने की हैं, तो उनमें स्टूडेंट भी जो यहाँ पे आए ये पहले दिन से करके आए कि जी मैंने अपने आप को ग्रूम इतना करना है, आई वॉन्ट टू बी लीडर इन द फील्ड।
1: बिल्कुल सर, आपने बजा फरमाया कि IR में UCB बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ देती है। मैं खुद भी IR का स्टूडेंट हूँ, तो मैं जब एडमिशन लेना था तो मुझे यही पता था कि CSS सिर्फ IR में होता है, तो मुझे CSS करना नहीं था, लेकिन फिर मुझे कहीं से पता चला कि IR का मीडिया में भी स्कोप है, तो मुझे मीडिया में इंटरेस्ट था, अभी भी मैं बैठा होस्टिंग कर रहा हूं। तो सिर्फ IR CSS के रिलेटेड नहीं है। आपने बहुत अच्छा गाइड किया स्टूडेंट्स को, बहुत खुशी हुई ये सब सुन के। तो सामीन, आज का प्रोग्राम हम यहीं पर अख्तिताम करते हैं, मिलते हैं एक नए हफ्ते में एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए गेस्ट के साथ। सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया। अल्लाह हाफ।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

इस सुरौर ताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, एफएम 92.6।
1: Fun, entertainment, news, knowledge, 24/7, only on UCP, FM 92.6, UCP Ki Duniya.

fun, entertainment, news, knowledge 24/7 only on UCP FM 92.6 UCP की दुनिया।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP ki duniya.

नशा न परेशानियां खत्म करता है न इसका सरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। बातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।

कुछ जालसाज आपको फ्री सिम कार्ड, मुफ्त फोन कनेक्शन या राशन का लालच देकर आपके फिंगरप्रिंट्स हासिल कर सकते हैं। ये कीमती डेटा गैर कानूनी सरगर्मियों में इस्तेमाल किया जा सकता है, लिहाजा फिंगरप्रिंट्स देते हुए मोहतात रहें। अपने शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड सिमों की तादाद जानने के लिए शनाख्ती कार्ड नंबर 668 पर SMS करें या www.cnic.sims.vk पर चेक करें।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

0: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
1: Listen, learn, discover. With radio station FM 92.6 UCB ke dhanyawad.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

आवाज मुनफरिद, हौसले बुलंद और लगन है सच्ची, इसीलिए तो यूसीपी की दुनिया के साथ ये दोस्ती है पक्की। कीप योर ईयर्स हेल्दी विद एफएम 92.6।

0: डेंगू मच्छर पानी में जन्म लेता है, इसकी अफजाइश के मराहिल से मुकम्मल आगाही डेंगू के खात्मे के लिए जरूरी है। लिहाजा पानी की टैंकी और ड्रम वगैरह जिनमें साफ पानी हो अच्छी तरह ढांप कर रखें। इसके अलावा घर, दफातर, दुकानों और किसी जगह कूड़ा करकट या फालतू अशिया जमा ना होने दें। घरों में मच्छर मार और लार्वा कश केमिकल का स्प्रे करवाएं। इस्तेमाल शुदा बोतलों, प्लास्टिक के थैलों और इस्तेमाल शुदा टायरों में हरगिज पानी जमा ना होने दें। माहौल खुश्क और साफ, डेंगू से मुकम्मल निजात। ये पब्लिक सर्विस मैसेज महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के तआवुन से पेश किया जा रहा है।
1: If you want to stay connected to the latest updates of your country, stay connected to University of Central Punjab FM 92.6 UCP ki duniya. Ki duniya, ki duniya.
2: Do patte patjhad ke pedon se utre the, phir udne ki chahat mein us sehraon se guzre. जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। ज़रा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
3: आपकी समातों से टकराती ये आवाज UCP की दुनिया FM 92.6।

आपकी समातों से टकराती ये आवाज यूसीपी की दुनिया एफएम 92.6। आप सुन रहे हैं एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया।